0: We want the top quality.
1: 他们共享机遇，既是挚友，又是合作伙伴。
0: How's your side?
2: I want to bring this juice to China.
0: Yes, you're checking the market or not?
2: Yes, I am checking a little.
0: Just my one friend has come from India, China, about this.
2: Oh, good. There's great.
0: This juice.
2: I will take some samples from Pakistan. In it, we can find a buyer. We can work on it.
0: But it's.
1: 好友的鼓励下，甄选样品成了推进计划的第一步。
2: 我是人工客。
3: Шумрянды зэнг мэдгэй ам бубай литрэд үнэ. Ян бар чсаг зог хүмгаа. Хэсэр мэш мэй.
2: Окей, чара забарда. Сэг ярг кэзэ бафхан.
1: Ай Мин ю дэдэ пэнэ жу зай дэнпу дэ ар цэн. Та бу зай шы, дэдэ зэ зэ дэн шэнг жи вэй лин шы дэн чан.
2: Мэ вузэн бэ сарирэ дэ Пакистан.
3: Дираш дэн кэшуа. Торт дэ.
2: Мэ вузэн пэган центра торт спрэмэр са цатр.
1: 踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫。沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，四五个小时即可抵达艾民的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
2: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。哎，那么你把一路往什么方向走？走这个的呀。为什么为什么为什么为什么为
1: 炉火边的团聚短暂珍贵。
2: 为什么为什么为什么为什么为什么为
4: 什么为什么为什
2: 么为什么为什么为什么为什么为什么为什么为什么
4: 为什么为什么为什么为什么为什么为
1: 什么虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。
5: Wow,
2: yeah, to some of that. What can I swimming?
5: Cocktail. Cocktail.
1: 这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商在此聚集。
2: We check it. How is the taste? How is the quality of the product?
1: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
2: The food is more difficult than the songs. Chinese would like it.कैसे हैं भाई ये इसकी क्या प्राइस है मेरे भाई
6: 300
2: कुछ कर लें कुछ दे देख लें थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे
1: 讨价还价控制成本是第二步
2: I am nervous because it's not a small business for a manga बता रहे हैं
7: ये कम से कम मैंने आपको
2: रेट बताया यार देखना बस उसी चीज पे लगे हुए